है कयामत मत तड़पा ऐसे तू अगर ना इंसाफी करने वाला हूं मैं उसके लिए पहले से ही मांगता हूं माफी

सो मैं विसर न जाए। जे जो चारे आर जा और दसूनी होए, नवा खना विच जाणी है नाल चले सब कोए। चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जगले,

होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक ना पाए मन्ने पक्षियों प्रगट जाए मन्ने मग ना चले पंथ मन्ने धर्म सेती संबंध।

मूर्ख अंध गोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन्हों पाई कर कर वेखे की ता अपना जिव तिस दी वड्याई।

जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राज माल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग।

0: Mamster Golgappe ate Golgappiyan da paani.
1: All Mamster products are nut-free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: Diwali is approaching and is your business ready? Sadia Wholesale has your Diwali essentials covered, so stock up and get ready to celebrate. Get in touch today, info@sadia.co.uk or give us a call on 0203-048-4848. On behalf of Sadia Wholesale, happy Diwali.
3: आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तप और साधना की देवी माँ ब्रह्मचारिणी हमें धैर्य, संयम और समर्पण की सीख देती हैं। मान्यता है कि उनकी आराधना से मन को शांति और संकल्प को शक्ति मिलती है। भक्ति का दीप मन में जलाएं, माँ के चरणों में शीश झुकाएं। माँ ब्रह्मचारिणी दे ऐसा वरदान, धैर्य और विश्वास से भर जाए जहान। लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।
4: नवरात्रि स्पेशल ऑन लाइका brought to you by Star Tours. Japan jana hai to Star Tours ke saath hi jana hai. Star Tours, travel once and you'll travel again and again.
5: Kickstart your day the right way with Brasco on Leica Radio. Never

0: 6 3SL
1: रात 8 बजे से टिल लेट डे टिकट्स और सीजन पास अवेलेबल
0: बुक नाउ वाया इंटरनेट इवेंटब्राइट और फैक्सोमा
1: कॉल प्रथम पटेल 07838302450
2: अल नूर पुराना बाएतमाद नाम नई रेंज के साथ प्रीमियम पल्सेस प्योर फ्रेश फुल ऑफ नेचुरल गुडनेस एवरीडे दाल से लेकर होलसम मील्स तक आपके एशियन ग्रोसरी स्टोर्स पर अवेलेबल है अल नूर टेस्ट द डिफरेंस
3: लाइक रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासन वेक अप फील गुड It's Donny Brasco on Breakfast.
4: Like a radio.
3: Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
5: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit

0: Falcon Atta is available at Quality Foods, Southall, Hounslow, Hayes, East London.
1: Find the best deal for flights on Air India, Emirates, British Airways, Virgin, BIA and Sri Lankan Airline only with TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833.
1: TravelHub, best service with unbeatable price.
2: At all protected.
1: Visit TravelHubWorld.com.
3: 0730099823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 0730099823.

0: home.
1: Can I just say, Shukar, finally, Javad is out of the toilet. Come on.
2: क्या फर्क पड़ता है अगर मैं शुरू से गाऊं या बीच में गाऊं गाना तो सुनना ही होगा डोनी भाई सुनिए
1: सुनाओ
2: कभी जो ख्वाब देखा तो मिली परछाइयां मुझको मुझ में महफिल की ख्वाहिश थी मिली तन्हाइयां मुझको
1: I don't even know if that's words.
2: हर तरफ दुआ दुआ और तुम
1: Yeah, sorry about that, bro.
2: आशियाने की बात करते हो
1: क्या बात है
3: Good morning, Dhoni. Today's gonna is आँख है बड़ी बड़ी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो
4: मॉर्निंग जॉनी
1: मॉर्निंग
4: आज का गाना है आंख है बड़ी बड़ी और तुम दिल चुराने की बात करते हो
1: पता क्यों क्योंकि रोमियो नाम है मेरा चोरी करना काम है मेरा
5: मॉर्निंग टोनी आज के गाना ऐसा सुनता है
1: कैसे सुनता है
5: कहीं

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: Celebrate every get-together with Haldiram's.
2: Punjabi samosas, aloo tikki, momos, spring rolls, beetroot kebab and more.
1: Bring everyone together over your favorite snacks. Find it at your nearest grocery store.
3: Haldiram's.
4: इंग्लैंड में हम पानी का इस्तेमाल उतनी तेजी से कर रहे हैं जितनी तेजी से प्रकृति इसे दोबारा भर नहीं सकती। अगर कुछ नहीं बदला तो 2055 तक हमें हर दिन 5 बिलियन लीटर से भी अधिक पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है और वेल्स में अधिक गीली सर्दियां और अधिक सूखी गर्मियां पानी की सप्लाई पर दबाव डाल रही हैं। हम में से अधिकतर लोग सोचते हैं कि हम दिन में 30 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत में ये 140 लीटर के करीब है। हम सब कुछ साधारण बदलाव करके पानी बचाने में मदद कर सकते हैं। शावर लेने में कम समय लगाएं, लीक करते नलों या टॉयलेट को ठीक करें, चलते हुए नल की बजाय बर्तन धोने के लिए वॉशिंग अप बाउल का इस्तेमाल करें और अपने डिशवॉशर या वॉशिंग मशीन पर एको मोड चुनिए। पानी अनमोल है, इसकी इज्जत के लिए हम सबको कम पानी का इस्तेमाल करना होगा। हर दिन पानी बचाने के आसान तरीकों के लिए लेट्स सेव वाटर सर्च करें या letssavewater.com पर जाएं।
5: Next, Kush on the Mid-Morning Show.
6: On Leica Radio.
5: London.

0: से निराला। मैमस्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी।
1: All मैमस्टर products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: Tune in to Navratri Hours on Leica Gold at 9 a.m. and Leica Radio at 7 p.m. Navratri Hours is sponsored by Star Tours. Travel once and you'll travel again and again.
3: अल नूर पुराना बाएतमाद नाम नई रेंज के साथ प्रीमियम पल्सेस प्योर फ्रेश फुल ऑफ नेचुरल गुडनेस एवरीडे दाल से लेकर होलसम मील्स तक आपके एशियन ग्रोसरी स्टोर्स पर अवेलेबल है अल नूर टेस्ट द डिफरेंस
4: Advertise your business on Leica Radio Network, covering Greater London, the Midlands, Greater Manchester and West Yorkshire. Call 0207 132 1458 or email sales@leicamedia.co.uk.
5: Leica Radio.
4: Where Bollywood comes first.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: Tune in to Navratri Hours on Leica Gold at 9 a.m. and Leica Radio at 7 p.m. Navratri Hours is sponsored by Star Tours. Travel once and you'll travel again and again.
2: Tune in to Navratri Hours on Leica Gold at 9 a.m. and Leica Radio at 7 p.m. Navratri Hours is sponsored by Tilda. Tilda Basmati, bringing a taste of home to celebrations since 1970.
3: इंग्लैंड में हम पानी का इस्तेमाल उतनी तेजी से कर रहे हैं जितनी तेजी से प्रकृति इसे दोबारा भर नहीं सकती। अगर कुछ नहीं बदला तो 2055 तक हमें हर दिन 5 बिलियन लीटर से भी अधिक पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है और वेल्स में अधिक गीली सर्दियां और अधिक सूखी गर्मियां पानी की सप्लाई पर दबाव डाल रही हैं। हम में से अधिकतर लोग सोचते हैं कि हम दिन में 30 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत में ये 140 लीटर के करीब है। हम सब कुछ साधारण बदलाव करके पानी बचाने में मदद कर सकते हैं। शावर लेने में कम समय लगाएं, लीक करते नलों या टॉयलेट को ठीक करें, चलते हुए नल की बजाय बर्तन धोने के लिए वॉशिंग अप बाउल का इस्तेमाल करें और अपने डिशवॉशर या वॉशिंग मशीन पर एको मोड चुनिए। पानी अनमोल है, इसकी इज्जत के लिए हम सबको कम पानी का इस्तेमाल करना होगा। हर दिन पानी बचाने के आसान तरीकों के लिए लेट्स सेव वाटर सर्च करें या letssavewater.com पर जाएं।
4: आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तप और साधना की देवी माँ ब्रह्मचारिणी हमें धैर्य, संयम और समर्पण की सीख देती हैं। मान्यता है कि उनकी आराधना से मन को शांति और संकल्प को शक्ति मिलती है। भक्ति का दीप मन में जलाएं, माँ के चरणों में शीश झुकाएं। माँ ब्रह्मचारिणी दे ऐसा वरदान, धैर्य और विश्वास से भर जाए जहान। लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।
1: नवरात्रि स्पेशल ऑन लाइका ब्रॉट टू यू बाय स्टार टूर्स। जापान जाना है तो स्टार टूर्स के साथ ही जाना है। स्टार टूर्स, ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन।
5: लंदन्स फील गुड हिट्स
6: लाइका रेडियो
5: लाइकारेडियो.com।

0: Mamster નું પાણીપુરી અને પાણીપુરી નો પાણી.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: Free gold coins on diamond jewelry. Seriously, Mahi?
3: Yes, Bebo.
2: Catch kya hai?
3: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free gold coins. Saath hi selected jewelry par diamond value aur making charges mein up to 40% off ka fayda uthao.
2: I still can't believe it. No catch.
3: Catches sirf matches mein hote hai, Bebo. This is your festive gift from Malabar Gold and Diamonds, Green Street, East London, and Broadway, South Hall.
4: नवरात्रि का जोश, गरबा की मस्ती और सेलिब्रेशन में हो बीकानेर वाला का स्वाद.
5: बीकानेर वाला परंपरा भी.
4: गरबा से पहले या बाद फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए छोले भटूरे, राज कचौड़ी, टेस्टी स्नैक्स और डिलिशियस मिठाइयाँ. विजिट हाउंसलो हाई स्ट्रीट, किंग स्ट्रीट, साउथ हॉल या क्रैनब्रुक रोड, गैंस हिल, इल्फर्ड. बीकानेर वाला, इस नवरात्रि गरबा भी, स्वाद भी.
5: बीकानेर वाला.
6: चनिया चोली रेडी, डांडिया रेडी, तो बस अब आपकी कमी है.
7: ओम इवेंट्स प्रेजेंट्स यूनाइटेड रास 2.0 आकांक्षा शाह के साथ 9 से 18 अक्टूबर द विलोज फॉरेस्ट रोड इल्फर्ड IG6 3SL
6: रात 8 बजे से टिल लेट. डे टिकट्स और सीजन पास अवेलेबल.
7: बुक नाउ वाया इंटरनेट, इवेंट ब्राइट और फैक्सोमा.
6: कॉल प्रथम पटेल 07838302450.
8: Escape to Vietnam, Cambodia, Hong Kong, Japan, Korea and Philippines with TravelHubWorld.com.
9: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833.
10: TravelHub, best service with unbeatable price.
9: At all protected.
10: Visit TravelHubWorld.com.
11: Tune in to Navratri Hours on Leica Gold at 9 a.m. and Leica Radio at 7 p.m. Navratri Hours is sponsored by Tilda. Tilda Basmati, bringing a taste of home to celebrations since 1970.
12: Feel good track, brought to you by Dairy Valley.
13: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज रेडियो डिजिटल या इवेंट सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड जल्दी करिए कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com
1: अंताक्षरी कंटिन्यूज विद

0: से निराला। मैम्स्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी।
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तप और साधना की देवी माँ ब्रह्मचारिणी हमें धैर्य, संयम और समर्पण की सीख देती हैं। मान्यता है कि उनकी आराधना से मन को शांति और संकल्प को शक्ति मिलती है। भक्ति का दीप मन में जलाएं, माँ के चरणों में शीश झुकाएं। माँ ब्रह्मचारिणी दे ऐसा वरदान, धैर्य और विश्वास से भर जाए जहान। लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।
3: Navratri special on Laika, brought to you by Tilda. Tilda Basmati, a taste of tradition in every celebration. Loved by generations since 1970. A Laika Radio Classic. Play.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: चनिया चोली रेडी, डांडिया रेडी, तो बस अब आपकी कमी है।
2: ओम इवेंट्स प्रेजेंट्स यूनाइटेड रास 2.0 आकांक्षा शाह के साथ 9 से 18 अक्टूबर द विलोज फॉरेस्ट रोड इलफर्ड IG6 3SL
1: रात 8 बजे से टिल लेट। डे टिकट्स और सीजन पास अवेलेबल।
2: बुक नाउ वाया इंटरनेट इवेंट ब्राइट और फैक्सोमा।
1: कॉल प्रथम पटेल 07838302450।
3: Witness the beauty of Jordan, Oman, Dubai, Istanbul, Doha and Abu Dhabi with TravelHubWorld.com.
4: Humse sasta kahin nahi mil sakta. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833.
3: TravelHub, best service with unbeatable price.
4: At all protected.
3: Visit TravelHubWorld.com.
2: Tune in to Navratri Hours on Leica Gold at 9 a.m. and Leica Radio at 7 p.m. Navratri Hours is sponsored by Star Tours. Travel once and you'll travel again and again.
5: London, तैयार हो जाओ। आ रहा है सेगा नवरात्रि 2026।
6: 9 से 10 अक्टूबर प्री नवरात्रि
5: और 11 से 19 अक्टूबर नवरात्रि का जश्न।
6: काजल पांड्या और अविनाश बारोट के साथ लाइव म्यूजिक पर झूमो, गरबा खेलो।
5: 17 अक्टूबर किड्स गरबा और 24 अक्टूबर शरद पूनम गरबा भी।
6: मिलते हैं एशियन कम्युनिटी सेंटर व्हाइट हार्ट रोड लंदन SE18 1DG।
5: टिकट्स बुक करो sega.london.co.uk।
6: सेगा नवरात्रि, भक्ति, मस्ती और

0: I love this song. Aja Aja. Sung beautifully by the one and only Aisha Bhosle. Ye Raste Hai Pyar Ke is the name of the movie. I love this one. Right, so today's Untangle the Tangle. Let's see, I think Ash has got it right. Jasmine says, I'll try. And Mandeep says, yeah, I want the name of the song, not the name of the movie. Song ka naam do.
1: Tasty Track of the Hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
0: Here it is again for you, if you've missed it. Two songs.
2: Mitch Bernagas, Untangle the Tangle. Bernagas, Untangle the Tangle.
0: So what are the two songs that have been played? I think it's actually quite easy. Even though I know the answer, I reckon I would have easily got that because it's Thora Hasane. Nahi hai. You tell me.
2: WhatsApp Leica Radio Greater London now on 07424 22 22 22. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: So for £1 you get 126.3 Indian rupees. Remember to go into the branch, do it online or use the Yono SBI UK mobile app.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Vish Bhatnagar across Greater London with Reload.
3: Winner, winner, roast for dinner. This autumn at Aldi. Feed four for under £7 with British whole chicken, broccoli, carrots, roast potatoes, chicken gravy granules and Yorkshire puddings. Tuck into low prices at Aldi. For full T's and C's, see aldi.co.uk/swap.
4: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
5: Wow! આટલા સ્વાદિષ્ટ મઠિયા ને ઘોઘરા શું ઘરે બનાવ્યા છે?
6: ના રે, આ તો શાયોનામાંથી લાવ્યા છે.
5: વાહ, તો આ મીઠાઈ ને ફરસાણ પણ શાયોનાના જ હશે ને?
6: હા, બિલકુલ.
7: Celebrate the festive season with Shayona. Enjoy crispy mathiya, delicious ghugra, savory farsan and mouth-watering mithai. Visit Shayona shops or Sri Swami Narayan Mandir, Neasden. Also available at selected Morrisons, Sainsbury's and Tesco stores or shop online at shayonauk.com. Shayona, swad je tehwar ne banave khas.
8: Discover the magic of India with Tickets to India. Whether you're planning your next adventure or a trip back home, you've got unbeatable deals waiting for you. Book online at ticketstoindia.co.uk or call 0208 518 9100. Tickets to India, bringing India closer.
9: बात क्या है बंटू? अरे बोलो काक भसुंडी।
10: मेरठ की कियोटिक फैमिली में आई पिक्चर परफेक्ट दुल्हन।
9: अरे नहीं, क्या हुआ? कैसे बेहोश हो गई यार?
10: और लाइफ बन गई हेवन।
9: भाभी डायन है।
10: But wait, ये भाभी है या डायन इन डिस्गाइज?
11: तुम्हें डायन ही चाहिए थी ना? लो आ गई।
12: नई नवेली स्टारिंग यामी गौतम धार, प्रोड्यूस्ड बाय आनंद एल राय। नई नवेली इन सिनेमाज अक्टूबर 16।
11: आप सिर्फ मजे लो।
13: चनिया चोली रेडी, डांडिया रेडी, तो बस अब आपकी कमी है।
14: ओम इवेंट्स प्रेजेंट्स यूनाइटेड रास 2.0 आकांक्षा शाह के साथ 9 से 18 अक्टूबर द विलोज फॉरेस्ट रोड इलफर्ड IG6 3SL
13: रात 8 बजे से टिल लेट। डे टिकट्स और सीजन पास अवेलेबल।
14: बुक नाउ वाया इंटरनेट इवेंट ब्राइट और फैक्सोमा।
13: कॉल प्रथम पटेल 0783830-2450।
15: नवरात्रि का जोश, गरबा की मस्ती और सेलिब्रेशन में हो बीकानेर वाला का स्वाद।
16: बीकानेर वाला परंपरा भी।
15: गरबा से पहले या बाद फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए छोले भटूरे, राज कचौड़ी, टेस्टी स्नैक्स और डिलिशियस मिठाइयाँ। विजिट हाउंसलो हाई स्ट्रीट, किंग स्ट्रीट, साउथ हॉल या क्रैनब्रुक रोड, गैंस हिल, इल्फर्ड। बीकानेर वाला, इस नवरात्रि गरबा भी, स्वाद भी।
16: बीकानेर वाला।
17: श्रीनाथ धाम वैष्णव संघ हवेली हैरो में भक्ति के रंग के साथ अब चढ़ेगा गरबा का रंग।
18: गेट रेडी फॉर नव विलास फीचरिंग निकेश परमार एंड हिज टैलेंटेड ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस ब्रिंगिंग यू एनर्जेटिक लाइव म्यूजिक एंड गरबा।
17: जॉइन अस 11th, 16th, 17th, 18th एंड 25th अक्टूबर फ्रॉम 7:30 PM ऑनवर्ड्स।
18: एंड फॉर आवर लिटिल स्टार्स किड्स गरबा ऑन 11th, 17th, 18th एंड 25th अक्टूबर 2 PM टू 4 PM।
17: फॉर टिकट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 07896-680-920।
19: Travel Hub, your safari specialist to Masai Mara, Serengeti and Cape Town with Kruger National Park. Call Travel Hub.
20: Humse sasta kahin nahi mil sakta. Call Travel Hub 24/7 on 0208-782-8833.
19: Travel Hub, best service with unbeatable price.
20: At all protected.
19: Visit travelhubworld.com.
21: Craving the taste of home this festive season?
22: Enjoy curries, chole bhature, vada pav, raj kachori, mithai, special desserts and more at Haldira. First London restaurant.
21: Visit Haldiram's in Leicester Square, London today. Haldiram's.
23: Elevate every meal with Hira. From spice blends to rich Hira sauces and Hira dals. Discover the true taste of South Asia at your local ethnic grocery store. Unbeatable quality, authentic flavor. Hira, king in quality, king in taste.
14: Tune in to Navratri Hours on Leica Gold at 9 AM and Leica Radio at 7 PM. Navratri Hours is sponsored by Star Tours. Travel once and you'll travel again and again.
24: आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तप और साधना की देवी माँ ब्रह्मचारिणी हमें धैर्य, संयम और समर्पण की सीख देती हैं। मान्यता है कि उनकी आराधना से मन को शांति और संकल्प को शक्ति मिलती है। भक्ति का दीप मन में जलाएं, माँ के चरणों में शीश झुकाएं। माँ ब्रह्मचारिणी दे ऐसा वरदान, धैर्य और विश्वास से भर जाए जहान। लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।
14: नवरात्रि स्पेशल ऑन लाइका brought to you by Star Tours. Japan jana hai to Star Tours ke saath hi jana hai. Star Tours, travel once and you'll travel again and again.
2: Vishwanaga on Leica Radio, Grace

0: London at Breakfast and Drive. This is Leica Radio.
1: This time of year, mom's already planning the mithai. Your auntie's counting down the days. Good thing Western Union is fast and easy because this family does not wait. Send in money directly to their bank account, mobile wallet or for cash pickup. So Diwali is exactly as it should be. Western Union. Share the light like you are there. Visit participating post offices, Euro Exchange or other retail locations. Sending online? Enjoy a zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply.
2: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
3: वेम्बली ना जूना अने जानीता पाटीदारो नवरात्रि नू आयोजन करे तो पछी एमा कई ज ना घटे
4: OMB इवेंट एंड माणिक चौक लेने आव्या छे नवरात्रि 2026 गरबा क्वीन जानवी रावल साथे
3: 10th ऑक्टोबरे प्री नवरात्रि अने 11th थी 19th ऑक्टोबर नवरात्रि नी रमझट वेम्बली नी आर केल्विन स्कूल वेम्बली हाई रोड मा
4: तो हालो सौ साथे मळी सहयोग आपो अने परिवार साथे गरबे घूमवा जोड़ाओ
3: टिकट्स अवेलेबल एट माणिक चौक अने वधु माहिती माटे संपर्क करो भरत पटेल ने 0789171 7439 जय
5: जी 073-00-99-8823 नोट किया किटी पार्टी बिजनेस मीटिंग कॉर्पोरेट इवेंट फैमिली ओकेजन बस व्हाट्सएप करे गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को सर्विस एक्सेलेंट फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे विवेक हाउस वॉटफर्ड बुक ऑन व्हाट्सएप 073-00-99-8823
6: फ्री गोल्ड कॉइन्स ऑन डायमंड ज्वेलरी सीरियसली माही
7: यस बेबो
6: कैच क्या है
7: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री गोल्ड कॉइन्स साथ ही सिलेक्टेड ज्वेलरी पर डायमंड वैल्यू और मेकिंग चार्जेस में अप टू 40% ऑफ का फायदा उठाओ
6: आई स्टिल कांट बिलीव इट नो कैच
7: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ग्रीन स्ट्रीट ईस्ट लंदन एंड ब्रॉडवे Southall.
8: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
9: Dubai is an opportunity to now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone.
10: 11, 11.
11: Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
12: Dubai is the place. 11,
11: 11. Call the Danube Properties London office today on 0203 963 5757 and book your meeting.
10: Danube 11, 11. Danube Properties.
13: 100% pure ghee, made using a traditional Ayurvedic recipe with a rich aroma and authentic taste. No preservatives, just pure goodness. Call 073-44-520-666.
14: Did you know Kavita Krishnamurthy won 3 consecutive Filmfare Awards in 1995, 1996 and 1997? Now that's an incredible musical hat-trick.
15: Kavita Krishnamurthy, celebrating Diwali, 1st November at Royal Albert Hall, London. Tickets at Box Office. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
16: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203 773 633 or visit mantraholidays.co.uk.

0: Falcon. Falcon Atta is available at Quality Foods, Southall, Hounslow, Hayes, East London.
1: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk. Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danew Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danew Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
2: इंग्लैंड में हम पानी का इस्तेमाल उतनी तेजी से कर रहे हैं जितनी तेजी से प्रकृति इसे दोबारा भर नहीं सकती। अगर कुछ नहीं बदला तो 2055 तक हमें हर दिन 5 बिलियन लीटर से भी अधिक पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है और वेल्स में अधिक गीली सर्दियां और अधिक सूखी गर्मियां पानी की सप्लाई पर दबाव डाल रही हैं। हम में से अधिकतर लोग सोचते हैं कि हम दिन में 30 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत में ये 140 लीटर के करीब है। हम सब साधारण बदलाव करके पानी बचाने में मदद कर सकते हैं। शावर लेने में कम समय लगाएं, लीक करते नलों या टॉयलेट को ठीक करें, चलते हुए नल की बजाय बर्तन धोने के लिए वॉशिंग अप बाउल का इस्तेमाल करें और अपने डिशवॉशर या वॉशिंग मशीन पर एको मोड चुनिए। पानी अनमोल है, इसकी इज्जत के लिए हम सबको कम पानी का इस्तेमाल करना होगा। हर दिन पानी बचाने के आसान तरीकों के लिए लेट्स सेव वाटर सर्च करें या letssavewater.com पर जाएं।
0: This is the number one Asian commercial group in London, consisting of Leica Radio and Leica Gold.

0: जिंदगी वहां सेट हो माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स.
1: The Leica Radio Network team and Alka Shah will be celebrating the festival of Navratri at United Ras 2.0, organized by OM Events, on Tuesday, 13th October at the Willows, Forest Road, Ilford, IG6 3SL. Join us for a vibrant celebration filled with festive energy.
2: Sponsored by Star Tours. Japan jana hai, to Star Tours ke saath hi jana hai. Star Tours. Travel once and you'll travel again and again.
3: વેમ્બલીના જૂના અને જાણીતા પાટીદારો નવરાત્રીનું આયોજન કરે તો પછી એમાં કંઈ જ ના ઘટે.
4: ઓએમબી ઇવેન્ટ એન્ડ માણેક ચોક લઈને આવ્યા છે નવરાત્રી 2026 ગરબા ક્વીન જાનવી રાવલ સાથે.
5: 11th થી 19th ઓક્ટોબર નવરાત્રીની રમઝટ વેમ્બલીની આર કેલ્વિન સ્કૂલ વેમ્બલી હાઈ રોડમાં.
4: તો હાલો સૌ સાથે મળી સહયોગ આપો અને પરિવાર સાથે ગરબે ઘૂમવા જોડાઓ.
5: ટિકિટ અવેલેબલ એટ માણેક ચોક. લાયકા રેડિયોનું નામ આપી મેળવો. ગુરુવાર સુધી એક ટિકિટ પર એક એન્ટ્રી ફ્રી. વધુ માહિતી માટે સંપર્ક કરો 07891717439 0730099923. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड. बुक ऑन व्हाट्सएप 0730099823.
6: सनशाइन स्काईस्क्रेपर्स एंड सूक्स
7: फॉर लेस देन यू थिंक. दिस इज अफोर्डेबल दुबई फ्रॉम साउथ Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
8: Flying direct with Emirates, so you can enjoy three nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break, or a shopping trip, Dubai has never been better value.
7: Hurry! Availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
8: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
7: Southall Travel. At all protected.
9: नवरात्रि का जोश, गरबा की मस्ती और सेलिब्रेशन में हो बीकानेर वाला का स्वाद.
10: बीकानेर वाला परंपरा भी.
9: गरबा से पहले या बाद फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए छोले भटूरे, राज कचौड़ी, टेस्टी स्नैक्स और डिलिशियस मिठाइयाँ. विजिट हाउंसलो हाई स्ट्रीट, किंग स्ट्रीट, साउथ हॉल या क्रैनब्रुक रोड, गैंस हिल, इल्फर्ड. बीकानेर वाला. इस नवरात्रि गरबा भी, स्वाद भी.
10: बीकानेर वाला.
7: चाय लवर्स, आपका फ्लेवर कौन सा? मसाला का तड़का, ऑर्थोडॉक्स की होल लीफ शान, सीटीसी की कड़क किक, ब्लू टी का कलर सरप्राइज या ग्रीन टी का लाइट अंदाज. चा फॉर यू, पांच चाय हर मूड के लिए. आसाम से शुरू हुई कहानी अब आपके कप तक. खरीदने या बिजनेस इंक्वायरीज के लिए विजिट करें chaforyou.com.

0: Mamster no panipuri ane panipuri no pani.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: Elevate every meal with Hira. From spice blends to rich Hira sauces and Hira dals. Discover the true taste of South Asia at your local ethnic grocery store. Unbeatable quality, authentic flavor. Hira, king in quality, king in taste.
3: Craving the taste of home this festive season?
4: Enjoy curries, chole bhature, vada pav, raj kachori, mithai, special desserts and more at Haldiram's first London restaurant.
3: Visit Haldiram's in Leicester Square. Wear London today.
5: From breathtaking wedding jewellery to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewellers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewellers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
6: आज नवरात्रि का दूसरा दिन है. इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है. तप और साधना की देवी माँ ब्रह्मचारिणी हमें धैर्य, संयम और समर्पण की सीख देती हैं. मान्यता है कि उनकी आराधना से मन को शांति और संकल्प को शक्ति मिलती है. भक्ति का दीप मन में जलाएं, माँ के चरणों में शीश झुकाएं. माँ ब्रह्मचारिणी दे ऐसा वरदान, धैर्य और विश्वास से भर जाए जहान. लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं. जय माता दी.
7: Navratri special on Laika, brought to you by Tilda. Tilda Basmati, a taste of tradition in every celebration. Loved by generations since 1970.
8: A Laika radio classic plays now.

0: now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: फ्री गोल्ड कॉइन्स ऑन डायमंड ज्वेलरी सीरियसली माही
2: यस बेबो
1: कैच क्या है
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री गोल्ड कॉइन्स साथ ही सिलेक्टेड ज्वेलरी पर डायमंड वैल्यू और मेकिंग चार्जेस में अप टू 40% ऑफ का फायदा उठाओ
1: आई स्टिल कांट बिलीव इट नो कैच
2: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ग्रीन स्ट्रीट ईस्ट लंदन एंड ब्रॉडवे South Hall.
3: ICICI Bank Money to India, which is trusted by millions across 16 countries, is now in the UK.
4: Wow! So, sending money to India is instant?
3: Yes, from any bank in the UK to any bank in India. Real-time exchange rates, round-the-clock support. Not only this, we also get a preferential rate and zero fees on our first 5 transfers.
5: Download ICICI Bank's Money to India UK app today from the Play Store or App Store. ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA. Terms and conditions apply.
6: Something new has just landed at Cake Box. Nationwide delivery is here. Now you can send a personalized Cake Box straight to someone special, wherever they are. Birthday miles away? Send a cake. Big congratulations? Send a cake. Just want to make their day? Send a cake. And because it's new, delivery is free for a limited time only. Wherever they are, be part of their celebration. Cake Box Celebrations, now delivered nationwide. Order now at cakebox.com.

0: चढ़ेगा गरबा का रंग।
1: गेट रेडी फॉर नव विलास फीचरिंग निकेश परमार एंड हिज टैलेंटेड ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस ब्रिंगिंग यू एनर्जेटिक लाइव म्यूजिक एंड गरबा।
2: जॉइन अस 11th, 16th, 17th, 18th एंड 25th अक्टूबर फ्रॉम 7:30 PM ऑनवर्ड्स।
1: एंड फॉर आवर लिटिल स्टार्स किड्स गरबा ऑन 11th, 17th, 18th एंड 25th अक्टूबर 2 PM टू 4 PM।
2: फॉर टिकट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 07896-680-920।
3: This Diwali, celebrate with Shayona.
4: Enjoy Mathia and Chora Fali. Mix and match any three for just £4.50.
3: Discover our delicious range of fresh UK-made mithai, available at Shayona stores.
4: Visit our new Honeypot Lane store for all your snacking needs, including fresh hot food. Find selected Shayona lines at Morrison's, Tesco and Sainsbury's throughout the Diwali season.
3: Shop in-store or online at shayonauk.com. Shayona, swaad jit tehwar ne banave khas. We'll be right back.

0: Mr. Pani Puri or Pani Puri Ka Pani.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: कलाई पर हीरे, चेहरे पर मुस्कान. डायमंड टेनिस ब्रेसलेट 2,500 पाउंड से शुरू. मीनार ज्वेलर्स, 181 अपर टूटिंग रोड. कॉल 0208767-7627. मीनार ज्वेलर्स, द डायमंड स्पेशलिस्ट्स.
3: इंग्लैंड में हम पानी का इस्तेमाल उतनी तेजी से कर रहे हैं जितनी तेजी से प्रकृति इसे दोबारा भर नहीं सकती. अगर कुछ नहीं बदला तो 2055 तक हमें हर दिन 5 बिलियन लीटर से भी अधिक पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है और वेल्स में अधिक गीली सर्दियां और अधिक सूखी गर्मियां पानी की सप्लाई पर दबाव डाल रही हैं. हम में से अधिकतर लोग सोचते हैं कि हम दिन में 30 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत में ये 140 लीटर के करीब है. हम सब कुछ साधारण बदलाव करके पानी बचाने में मदद कर सकते हैं. शावर लेने में कम समय लगाएं, लीक करते नलों या टॉयलेट को ठीक करें, चलते हुए नल की बजाय बर्तन धोने के लिए वॉशिंग अप बाउल का इस्तेमाल करें और अपने डिशवॉशर या वॉशिंग मशीन पर एको मोड चुनिए. पानी अनमोल है, इसकी इज्जत के लिए हम सबको कम पानी का इस्तेमाल करना होगा. हर दिन पानी बचाने के आसान तरीकों के लिए लेट्स सेव वाटर सर्च करें या letssavewater.com पर.
4: Cranking out the biggest hits for the capital. This is Leica.

0: book now. Visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: लंदन तैयार हो जाओ, आ रहा है सेगा नवरात्रि 2026।
2: 9 से 10 अक्टूबर प्री नवरात्रि
1: और 11 से 19 अक्टूबर नवरात्रि का जश्न।
2: काजल पांड्या और अविनाश बारोट के साथ लाइव म्यूजिक पर झूमो, गरबा खेलो।
1: 17 अक्टूबर किड्स गरबा और 24 अक्टूबर शरद पूनम गरबा भी।
2: मिलते हैं एशियन कम्युनिटी सेंटर, व्हाइट हार्ट रोड, लंदन, SE18 1DG।
1: टिकट बुक करो segalondon.co.uk।
2: सेगा नवरात्रि, भक्ति, मस्ती और गरबा।
3: सत समाज यूके के साथ मनाइए नवरात्रि गरबा।
4: 11 से 20 अक्टूबर तक 10 रातों का जश्न और 24 अक्टूबर को स्पेशल शरद पूनम।
3: आइए नक्षत्र हॉल, फेल्थम, TW13 7NA।
4: रात 8 बजे से देर रात तक। टिकट सिर्फ £5 पर पर्सन पर नाइट। 5 साल से छोटे बच्चे फ्री।
3: फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आइए जमकर गरबा खेलिए। टिकट्स और जानकारी के लिए महेंद्र भाई को कॉल करें
4: 07956458872।
3: तो मिलते हैं गरबा में।
5: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
6: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
5: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
7: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
8: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
9: Escape to Vietnam, Cambodia, Hong Kong, Japan, Korea and Philippines with travelhubworld.com.
10: Hum se sasta kahin nahi mil sakta. Call Travel Hub 24/7 or 0208-782-8833.
11: Travel Hub, best service with unbeatable price.
10: At all protected.
11: Visit travelhubworld.com.
12: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
13: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
14: Elevate every meal with Hira. From spice blends to rich Hira sauces and Hira dals. Discover the true taste of South Asia at your local ethnic grocery store. Unbeatable quality, authentic flavor. Hira, king in quality, king in taste.
13: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
15: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural.

0: Mamster no panipuri ane panipuri no pani.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: चाय लवर्स, आपका फ्लेवर कौन सा? मसाला का तड़का, ऑर्थोडॉक्स की होल लीफ शान, सीटीसी की कड़क किक, ब्लू टी का कलर सरप्राइज या ग्रीन टी का लाइट अंदाज? चा फॉर यू, पांच चाय हर मूड के लिए। आसाम से शुरू हुई कहानी अब आपके कप तक। खरीदने या बिजनेस इंक्वायरीज के लिए विजिट करें chaforyou.com।
3: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
4: Listen to Laika Radio as we bring you a whole hour of Navratri devotion every day at 7 p.m. Tune in and blessings of Ma Durga. Navratri Hours, sponsored by Star Tours. Travel once and you'll travel again and again.
3: Time for Radio Wally's Cultural Cracker.

0: Such a beautiful one, isn't it? प्राची नकी आवाज के साथ थी पहलू मानू नौर तू जीले और आज पहली नहीं आज दूसरी नवरात्रि है नवरात्रि कल शुरू हो गई थी तो आज एक्चुअली दूसरी नवरात्रि चल रही है वी आर इन द पावन महीना ऑफ नवरात्रि सुपर फैन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव अगेन आर टी सेइंग हैप्पी हैप्पी मंडे प्रिंसेस रेडियो वाली एंड नवरात्रि ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एट बैक इन लंदन इट्स आल्सो थैंक्सगिविंग हॉलिडे फॉर अस हियर इन कनाडा सो आई एम सो थैंकफुल टू हैव सच अ यूनिक एंड अमेजिंग प्रिंसेस हु मेक्स माय लाइफ ब्राइट through her music love and care in her own special way so blessed to be called your superfan dahil se shukriya karam meherbani for not only being my superfan but for being so amazing at everything you are and everything you do and everything you give me and you know what seeing as it is a Thanksgiving holiday out in Canada you know what I'm going to open this out to the world. Let me know tonight, what is it you're thankful for? And whilst you do that, I'm going to bring on your feel-good track of the hour. How can we start a Navaratri without this beautiful, beautiful track by one of my favorite artists?
1: Feel-good track brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months. Dubai is the place. 11. Call the Danube Properties London office today on 0203 963 5757 and book your meeting. Danube 11. Danube Properties. Danube 11. No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best gara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
1: The Laika Radio Network team and Alka Shah will be celebrating the festival of Navratri with Sri Sattavis Gam Patidar Samaj on Wednesday, 14th October at 40 Avenue, Wembley, HA99PE. Come and share the joy of Navratri with us.
2: Sponsored by Tilda. Tilda Basmati. Make every celebration taste like home. Loved by generations since 1970.
3: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू
4: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 0203773633 नाउ एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर Travel Mantra.
5: अल नूर पुराना बाएतमाद नाम नई रेंज के साथ प्रीमियम पल्सेस प्योर फ्रेश फुल ऑफ नेचुरल गुडनेस एवरीडे दाल से लेकर होलसम मील्स तक आपके एशियन ग्रोसरी स्टोर्स पर अवेलेबल है अल नूर टेस्ट द डिफरेंस
6: अंदाज आपका चमक हमारी खूबसूरत चेन सिर्फ 225 पाउंड से शुरू मीनार ज्वेलर्स 181 अपर टूटिंग रोड कॉल 0208767 7627
7: Laika Radio Network

0: थोड़ा थोड़ा प्यार हो गया है, थोड़ा थोड़ा है, बाकी ऐसे ही होना जिंदगी में ना। सारा प्यार एक साथ कर जाओगे तो कल क्या करोगे?
1: थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी।
2: Gold Rate is sponsored by Gold Bank London. Visit us online at gold-bank.co.uk or visit us in store on 215 The Broadway, Southall.
0: And your gold is trading at £101.53 per gram.
2: Gold Rate is sponsored by Gold Bank London. Gold outperforming all other investment options. So invest in gold with Gold Bank London. 215 The Broadway, Southall or buy from us online at gold-bank.co.uk.
3: Trending track of the week.

0: अभी ये गाना एक ही तरफ जा सकता है, मेरे बगल में जो चांद का टुकड़ा है, और ये तारीफ सिर्फ मैं आज ही आज कर सकती हूँ, इतनी बेरुखी से। आई एम ऑफ कोर्स टॉकिंग अबाउट हमारी फिर से 21वीं साल का सेलिब्रेशन करने के लिए जो आई हुई है हमारी अनीसा नासिर, नहीं आपकी अनीसा नासिर, हम मेरी तो प्यारी प्यारी अनीसा जी, विशिंग यू अ वेरी वेरी वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे दिल की गहराइयों से आपकी गहराइयों तक, विशिंग यू अ मैसिव हैप्पी बर्थडे। अभी देखो, यू वुड बी एक्सपेक्टिंग कि आई वुड प्ले आवारा, हमारा जो गाना है, लेकिन नहीं, मैं चला, लेकिन फिर मैं बोलूँगी कि मैं चला तो फिर वो हमारा नहीं हो जाएगा, है ना, वो ज़्यादा हो जाएगा। सो एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, और प्यार करते रहेंगे। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। टाइम नाउ दैट लेट्स ब्रिंग ऑन योर फेवरेट गुड ट्रैक ऑफ द आवर। नवरात्रि का माहौल चल रहा है, तो इन द वर्क हुज़ द वेरी टैलेंटेड ईशानी दवे।
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: It is probably one of my favorite garbos, and I promise it will make your heart melt.